थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM. रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कुछी कुछी मुश मुश हो गया सब कुछ, सारा एक्सिन बेक्सिन हो गया. अब क्या चाहिए हमें? दैट वी वांट टू बी हग्ड एंड किस्ड एंड करेस्ट. लेकिन कुछ इस संप्रजाति के मानव होते हैं, बेसिकली दैट काइंड ऑफ मैन यार, जिनको ये लगता है कि बस अब सब कुछ हो गया ना, अब नहा लेते हैं पहले जल्दी से भाई, फटाफट फटाफट. एंड यू आर लाइक यार वो कडल स्नगल्स तो ही लाइक दो मिनट करा तो है कडल स्नगल्स, अब जल्दी से नहा लेते हैं उसके बाद कडल. भाई ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस प्रीमेच्योरली ब्रेक कर रहे हो. आप नहीं नहा सकते हो जब तक आपकी बंदी को कडल स्नगल्स फुल ऑन नहीं मिल गए हो, जब तक वो ना कहे कि एयू यार यू आर सो स्वेटी एंड यू आर स्मेलिंग ऑफ लाइक यू नो ऑल ऑफ दिस नॉडी स्टफ दैट वी हैव डन, तब तक तुम जाकर नहीं नहा सकते. ठीक है, वैसे तुमसे पूरे सावन के महीने में नहाया नहीं जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इट्स इनफ ड्यू टू कीप यू वेट एंड वट एवर. लेकिन वैसे तुम्हें नहाना है जब हम तुम्हारे साथ स्नगल टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं. समझ लो मुन्ना, ठीक है, अगली बार तुमने स्नगल टाइम के बीच में नहाने का प्रस्ताव रखा ना, तो हम ब्रेकअप का प्रस्ताव रख देंगे. उसके बाद तुम डिसाइड कर लो, हम चले गए तो वापस मुड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पैंट्स भी हम ही पहन रहे हैं और डिसीजन भी हम ही मेक कर रहे हैं. दैट सेड, अगर आपका बॉयफ्रेंड इतना पूकी है दैट यू कांट डू ऑल ऑफ दिस विद हिम बिकॉज ही जस्ट जनरली लाइक अ रेड फ्लैग नहीं ग्रीन फ्लैग, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू डार्लिंग, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर? लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
2: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
1: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
2: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर, ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर, लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. Oh. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
1: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
2: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
1: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे।
2: एग्जैक्टली, या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशन सो क्विकली यू नो विद, सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में सबके सामने आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है विच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फोन करूंगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूंगी एंड बात खत्म. अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी.
1: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती है.
2: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक. माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था. सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज सीक्रेटली ना वो मेरे को थोड़ा पसंद था.
1: तो पर थोड़ा पसंद था मतलब
2: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता.
1: I'm not judging anybody. Correct. Carry on.
2: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड. अगले दिन में से मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो, डिड ही टॉक अबाउट मी. सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस jealousy in me was like no, I can't see them together. क्या पता मैं हो सकती हूँ ना. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड की नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है तो पूछ जाओ उसके बारे में. एंड शी वाज प्रीटी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल. तो या
1: बुरा नहीं लगा आपको?
2: अब लगा ना. तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई. सो अभी नाउ रिसेंटली दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न्ड इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी. And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, बट फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं होता. मेरे से पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैंने क्यों झूठ बोला.
1: बेब यू नो इस सारे चक्कर में इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू एंड ओनली वन थिंग, वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माय लव.
3: यू've बीन रोशिफाइड.
1: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा. आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect Roshian. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: चर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
10: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट लिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: चर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
6: हेलो।
5: हाय, व्हाट्स योर नेम?
6: हाय, माय नेम इज फोरम।
5: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
6: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज़ वेल।
5: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
6: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन की हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर, सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
5: व्हाट्स हर नेम?
6: हर नेम इज महक।
5: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
6: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
5: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
6: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
5: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
6: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार, उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस।
4: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
7: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
11: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
12: Tera kya hoga Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने अपने भाई के बारे में एक बहुत क्रीपी चीज नोटिस की है दैट बेसिकली उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स मेरी तरह दिखती हैं और मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ. सो एसेंशियली ऑल हिज गर्लफ्रेंड्स लुक आइदर मम्मी की तरह या मेरी तरह. एंड देन आई फाइंड आउट फाइनली आफ्टर रिसर्चिंग कि ये इसलिए होता है क्योंकि इट्स अ थिंग कॉल्ड सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जो सिर्फ आदमियों में होता है, औरतों में नहीं. आदमी अट्रैक्टेड फील करते हैं टूवर्ड्स वुमेन जिनका बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल उनकी माओ की तरह होता है. सो माई मम एंड आई हैव लाइक really sharp jawline and most of Karan's girlfriends all of them have equally sharp jawlines. Ab dekho apni girlfriend ki photo ki taraf, dekho apni mummy ki photo ki taraf and then get creeped out a little bit. Aur jab creeped out ki feeling chali jaye and you want to know more about relationships, feel free to hit me up insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai r-o-c-h-i-e. So do whatever you have to do, lekin kahin mat jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot. Give me-

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: पूर्णिमा।
1: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
2: गुड।
1: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
2: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
1: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
2: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
1: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
2: बड़े हैं।
1: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
2: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
1: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
2: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बचपन से आप बैक बेंचर रहे हो, इट डज नॉट मीन कि जिंदगी भर आपको बैक बेंचर रहना चाहिए. ये आपको सिखाते सिखाते मैं थक गई हूँ. लेकिन अगर आपको फिर भी एडवाइस चाहिए कैसे आप अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो बन सकते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अमित है. हाय अमित.
2: हेलो रुचि.
1: ओले, सो क्यूट, यू जस्ट चेंज्ड माय नेम टू साउंड लाइक रशिया इन हिंदी. हेलो रूसी. कैसे हो आप?
2: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ.
1: झूठ मत बोलो, इतने लंबे चिट्ठे लिख के भेजे आपने मुझे इंस्टाग्राम पर.
2: यार बचपन से मतलब कि मैं पहले पढ़ाई में भी जी रहा.
1: हाँ.
2: मतलब कभी मौका ही नहीं मिला
1: क्या करने का,
2: मतलब गर्लफ्रेंड टाइप, मतलब इन चक्करों में पढ़ने का. तो रिसेंटली मतलब मेरी अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो गया, उसके बाद जॉब भी मिल गई. अब बढ़िया, तो अब ये है कि अब लाइफ को सेटल करना है. अब मेरे को फाइनली एक लड़की पसंद आई, उसके साथ मैं इंस्टा पे हूँ भी सब कुछ. कभी कभार बात करती है, कभी नहीं करती. अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है.
1: तो उसको पता है कि यू लाइक हर?
2: मे बी शी नोज.
1: मे बी क्या होता है यार, जैसे खुल के मेरे को बताया तूने, पता पता बोला उसको तूने, लाइक खुल के
2: नहीं बोला, मतलब बातों में
1: कोई क्लैरिटी नहीं होती है. डायरेक्टली नहीं बोला है तो लड़की मुड़ के बोलेगी, चल मान ले एक सेकंड के लिए, दैट शी गेट्स एंगेज्ड टू समबडी एल्स, एंड उसके बाद आप उसे जाकर कहोगे कि यार तूने तो किसी और से एंगेजमेंट कर ली, मैं तुझसे प्यार करता था. तो अगर वो आपको बोलेगी कि तूने तो कभी बोला नहीं मुझे, ये तो सच है ना, आपने कभी डायरेक्टली तो बोला नहीं. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब उसे आपसे प्यार है कि नहीं है,
2: अब यही तो जानना है अपन.
1: तो आप जब तक उसे ये नहीं बताओगे दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, कैसे जानोगे?
2: मेरे पास तो सारी फीलिंग्स हैं.
1: अरे ये आपको पता है ना, तो फीलिंग्स को सिंगल से डबल करने के लिए सामने वाले को बताना पड़ता है. जैसे आपने मुझे अभी बताया ना कि सब कुछ हो गया लेकिन प्यार करने का टाइम नहीं था, और अब जब बड़ा हो गया हूँ तो आई रियलाइज कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो. क्या आपको भी मेरे बारे में सेम फीलिंग्स है? ऐसे करना होता है.
2: पता है क्या यार, क्या? मैं शुरू से ही फट्टू रहा हूँ मतलब.
1: तो आप जिंदगी भर थोड़ी फट्टू रहना है, बदल सकते हो आप इसको. जस्ट बिकॉज आप आज तक फट्टू थे इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल भी फट्टू रहोगे, समझे?
2: समझ में डर लगता है मेरे को.
1: ऑफ कोर्स डर लगता है, और अभी तो डर लग रहा है. लड़की किसी और के साथ चली गई ना तो फिर बुरा भी लगेगा, और डर से ज्यादा बुरा फील करने में लगता है.
2: चलो अभी ट्राई करूंगा, अभी मिलेगी एक मैरिज में, मिलना उसने मुझे.
1: अरे वाह, तब तो वो भी गुड लुकिंग लग रही होगी, आप भी हैंडसम लग रहे होगे. चुपके से उसे कोने में ले जाना, एक गोल गप्पा खिलाना, और उसके बाद बोलना कि देख यार इधर उधर की बातें बहुत कर ली, अब कुछ असली बातें कर लेते हैं दिल की, मुझे तुझसे प्यार हो गया, छोड़ दो अपना फट्टू बना अब.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच.
1: टेक केयर योरसेल्फ यार, ऑल द बेस्ट. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही इनकी तरह आपको अभी तक ये पता नहीं है कि डायरेक्टली कैसे अप्रोच करते हैं प्यार में, बिकॉज आप तो फट्टू हो, देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई लव यू गाइस सो इनक्रेडिबली मच. सो व्हाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
5: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
3: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ठीक है, तो ओके, अगर आपको गाना गाना नहीं आता, गाना सुनना तो आता है ना. अगर आपके पार्टनर को इंटरेस्ट है गाना गाने में और अगर वो थोड़ा बहुत सुरीला गा लेता है तो सुन लो ना उसकी कवालियां, सुन लो ना उसकी गजलें. इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बेस्टी के रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है. हर पार्टनर, न्यू फाउंड पार्टनर, इज अ फेयरली डिसेंट सिंगर. अब उस बंदे को गजल्स पसंद है, उसे कवालियां पसंद है और उसे अच्छा लगता है अरिजीत सिंह के गाने गाना. लेकिन मेरी बेस्टी, जब से मैं उसे जानती हूँ ना, शी इज बीन लिसनिंग टू हार्ड कोर लाइक रॉक एंड कभी कभी पॉप सुन लेती है, बट ये सब उसका सीन नहीं है, कवाली वगैरह. एंड आई टोल्ड हर कि यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे उसके साथ गाने की जरूरत नहीं है. अगर वो कुछ अच्छा सा गा रहा है, ही इज डूइंग अ मेहदी हसन रेंडिशन, सुन ले उसे, तेरे म्यूजिकल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे शायद, यू विल एक्सपैंड योर स्पेक्ट्रम एंड ही विल फील अप्रिशिएटेड. एंड आई ऑनेस्टली फील कि हर रिलेशनशिप में, और प्रॉमिस मैं ही अपने हर एक्स रिलेशनशिप में करती थी, अगर आपके पार्टनर को कोई इंटरेस्ट है जो आपको पर्टिकुलरली एक्साइट नहीं करता है, लाइक वन ऑफ माई एक्सेस यूज टू लव रीडिंग मर्डर मिस्ट्रीज, एंड मेरा जैम नहीं है मर्डर मिस्ट्रीज, बट मैं फिर भी उसकी किताबें बोरो करके पढ़ती थी एंड ही यूज टू गेट सो एक्साइटेड कि यार रोशी किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रही है जो मुझे अच्छा लगता है. एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डिंग थिंग ब्रो. ट्राई करके देखो अपने पार्टनर के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना, एंड दैट कैन एक्चुअली बॉन्ड यू टू द नेक्स्ट लेवल. और एक बार नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग हो जाएगी तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, यू नॉट ही पर्सन, उसमें भी काफी एलिवेशन हो जाएगा. एंड वंस दैट हैपेंस, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना फॉर दिस अडोरेबल हैक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी विद योर थैंक यू एंड योर लव एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
1: हाय आचल।
2: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
1: सो आपके भाई का नाम क्या है?
2: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
1: सुमीर, और के साथ में है या वो इंडिया में है?
2: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
1: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
2: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
1: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
1: Wow.
2: Yeah.
1: That's amazing. And our contest
0: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है दैट यू मीट समबडी, ओके, नाउ दैट पर्सन इज बेसिकली अ सेपियोसेक्सुअल, अर्थात वो इंसान जो मेंटली ऐसी कॉन्वर्सेशंस करता है कि आपके दिमाग के जो भी 680 ब्रेन सेल्स हैं सब जागृत हो जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि यार दिस इज सो एक्साइटिंग, तो योर ब्रेन इज लिट अप विद अराउजल एंड एक्साइटमेंट. लेकिन फिर वो इंसान जो भी करता है, उसे गुस्सा आता है तो भी यू गेट टर्न्ड ऑन, वो हंस रहा होता है तो भी यू गेट टर्न्ड ऑन, वो आपसे बात कर रहा होता है, आपको जनरल न्यूज सुना रहा होता है कि ये देश उस देश पर हावी हो रहा है, आपको तो भी टर्निंग ऑन लगता है, आपसे स्टॉक एक्सचेंज की कॉन्वर्सेशन कर रहा है कि कैसे सेंसेक्स गिरे जा रहा है और आपका ब्रेन टर्न्ड ऑन हुए ही जा रहा है, एंड इस बात पर कोई कैप है ही नहीं. ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में? आई एम टॉकिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक हमें गुफ्तगू कर लेनी चाहिए. इट्स सच अ स्ट्रेंज साउंडिंग वर्ड, हाँ, लेकिन हमें गुफ्तगू कर लेनी चाहिए क्योंकि ये क्या माजरा है. आई थिंक इट इज वेल बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ मियर सेपियोसेक्सुअलिज्म, ये कुछ और ही बात है भाई. लाइक क्या ये जन्म जन्मांतर का प्यार है? क्या ये ट्विन सोल्स हैं? क्या ये ट्विन फ्लेम्स हैं? तो क्या है ये, मुझे आप बताओगे ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो क्या, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हिट मी अप, लेट्स गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में सबके सामने आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है विच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फोन करूंगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूंगी एंड बात खत्म. अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी.
1: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती है.
2: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक. माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था. सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज सीक्रेटली ना वो मेरे को थोड़ा पसंद था.
1: Okay. तो पर थोड़ा पसंद था मतलब
2: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता.
1: आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, करेक्ट, कैरी ऑन कैरी ऑन.
2: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड. अगले दिन मेरे से मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो, डिड ही टॉक अबाउट मी. सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस jealousy in me was like no, I can't see them together. क्या पता मैं हो सकती हूँ ना. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड की नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है तो पूछ जाओ उसके बारे में. एंड शी वाज प्रीटी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल. तो या
1: बुरा नहीं लगा आपको?
2: अब लगा ना. तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई. सो अभी नाउ रिसेंटली दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न्ड इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी. And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, बट फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं होता. मेरे से पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैंने क्यों झूठ बोला.
1: Babe, you know, इस सारे चक्कर में if there is one thing that can help you and only one thing, वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माय लव.
3: यू बीन रोशिफाइड.
1: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा. आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect Roshian. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप किसी इंसान को मिलते हो और सामने वाला इंसान कहता है दैट दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या वो डेट भी नहीं करना चाहते लेकिन दे रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू, वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है दैट वो चाहते हैं दैट यू बी टुगेदर लेकिन उस इंसान के टर्म्स पर जहां उसे आपको कमिटमेंट ना करनी पड़े इमोशनल या अदरवाइज. और अगर कोई आपसे ये बात कह रहा है देन माई सजेशन टू यू इज थोड़ा सा पॉज करके सोचो इज दैट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ समबडी हु इज नॉट विलिंग टू कमिट एंड इफ यू आर ओके विद इट गो अहेड एंड डू इट जैसे मैंने किया बट द एंड रिजल्ट इज काइंड ऑफ पेनफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर वो इंसान जो फुल कमिटमेंट लेकर इस रिलेशनशिप में घुसता है. और अगर आप ऑलरेडी इसे फेस कर चुके हो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेट मी टेल यू वन फाइनल थिंग जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर लेट्स फाइंड आउट. हेलो
3: हाय माय नेम इज संध्या हाउ आर यू प्रिसिला.
2: हाय संध्या आई एम गुड हैप्पी राखी टू यू संध्या.
3: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर. We used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get all those karare note. Oh. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, video call and then we just, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay, and that's kind of the sad reality. क्वालिटी ऑफ लाइफ की अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
3: एग्जैक्टली या वी हैव वी आर इंडियंस एंड वी मेक रिलेशन सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स .com.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath.
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. वी गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर. तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन. सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना. गाने का नाम है मूव बॉडी. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स. गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में. दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है. कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है. वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग. मे भी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो. आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो. इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी. आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था एंड आई लव द सॉन्ग. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है. देन लास्ट ईयर मिस मैश का. इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज. इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स. ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई. और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन. मुसाफिर कैफे का गाना है. आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है. मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी. दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है. एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते उसका नाम है काफी है ना. ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है. That ultimately, जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या how do we want to feel loved? कि किसी के लिए हमारी presence बस enough है, that काफी है ना. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनीता गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश. शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. उनकी कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है काफी है ना. आई नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Nanak Food presents Mirchi karega bandhan pura
2: Hamare saath hamari agli caller hai line par Hello
3: Hi
2: What's your name
3: Sheetal
2: Hi Sheetal how are you
3: Good
2: Sheetal happy Rakhi to you
3: Same to you
2: Kya chal raha hai Rakhi ki taiyari kaise chal rahi hai
3: Bahut acche se chal rahi hai Rakhi ke din hum sabhi bhai aur sister jane wale hai mere bhaiya ke ghar Friday ko hi is bar hum Friday ko hi jane wale hai kyunki next day Saturday hai to
2: Great kaun kaun hone wala hai unke naam bataiye unko kuch message dena चाहते हो आप
3: मेरा भाई अभी स्टोर पे है मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी छोटी दीदी है नैना दीदी बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे हैं तो दो ब्रदर है बेटे हैं और एक बेटी है हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
0: पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सुजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग right next for you on our special Gaana Spotlight. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Enjoy.

0: कितने मेरी।
1: God damn, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 5.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Ghana Indie Top 10.
5: Kanika ke saath on Mirchi.
6: Number 4.

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 Haftos Se Is Countdown Par Barkarar, this week on Gaana Number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Ka Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hame achhe lagne hote hai na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hai. Wo bas humare raaste aa jaate hai. Aise maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो I'm going to play that song for you, which is basically about one-sided love. And इतने poetic way में इन्होंने one-sided love के बारे में बात करी है. You know, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर one-sided love के बारे में बात हुई है. Honestly, गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थॉरली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanega on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है Shisha, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring Swara Verma. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके Shisha is playing right next for you on Gaana number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशंस हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अश्काय, वी टेक योर सजेशंस, रिकमेंडेशंस वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
2: Teri Deewani
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, बट आई एम ऑल अबाउट यू बेब। पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहाँ प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहाँ आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता, ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ। आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर your song next week. Now back to the countdown, it's time for the top 2 songs of the week. Is hafte ke countdown

0: गाने बैक टू बैक हर्ष नुसी का साड़ी सुन और नंबर दो बंजारे का बैरन और नंबर एक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय
1: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज फोरम।
1: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
2: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज़ वेल।
1: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
2: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
1: व्हाट्स हर नेम?
2: हर नेम इज महक।
1: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
2: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
1: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
2: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
1: सो महक आपको राखी बांधे, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
2: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार, उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

रूना लैला की आवाज है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू है, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Zehreela Insaan movie se ye gana, which is picturized on Rishi Kapoor. It is sung by Kishore Da. Sunane wali kaun hai aapko purani jeans pe? Correct, aapki pyari Shreya. अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें. ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दा से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए. लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था. So, किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

है कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसपे देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा वाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म केम हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: 92.7 FM, Radio Mitchie, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट. हेलो.
3: हाय, माय नेम इज संध्या. हाउ आर यू प्रिसिला?
2: हाय संध्या, आई एम गुड. हैप्पी राखी टू यू संध्या.
3: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम. दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर. लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
3: एग्जैक्टली. या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com. We'll be right back.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना है फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो बस गाने सुनकर के वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
1: Hamare saath hamari agli caller hai line par. Hello.
2: Hi.
1: What's your name?
2: Sheetal.
1: Hi Sheetal, how are you?
2: Good.
1: Sheetal, happy Rakhi to you.
2: Same to you.
1: Kya chal raha hai? Rakhi ki taiyari kaise chal rahi hai?
2: Bahut acche se chal rahi hai. Rakhi ke din hum sabhi bhai aur sister jane wale hai mere bhaiya ke ghar. Friday ko hi. Is baar hum Friday ko hi jane wale hai kyunki next day Saturday hai to.
1: Great. Kaun kaun hone wala hai? Unke naam bataiye. Unko kuch message dena चाहते हो आप?
2: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं। दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे हैं, तो दो ब्रदर है और बेटे हैं और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहिया के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। The only heroine who agreed to work with बच्चन साहब in this film was अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज फोरम.
2: हैप्पी राखी टू यू फोरम.
3: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल.
2: थैंक यू सो मच. सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
3: जी सब बढ़िया. मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं. इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन.
2: What's her name?
3: Her name is Mehak.
2: Mehak, what a beautiful name. Tell me, आप कैसे मनाते हो राखी?
3: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक. हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे.
2: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
3: ओ महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है.
2: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो. एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस? लाइक राखी का क्या महत्व है?
3: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है. पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है. तो हम मोस्टली रेडियो वो आपको सुनती है काफी बार. उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय।
2: हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज नैशल।
1: हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
2: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
1: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
2: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
1: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
2: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
1: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
2: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। सम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
2: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्मपाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्मपाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इट वॉज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्मफेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आभूषण के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ, आज वाला ना किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। On that note, this is Shreya signing off. Facebook or Insta pe my handle is RJ Shreya with love. That's RJ SHREYA Shreya with love. To is awaaz ke peeche ka chehra dekhna ho to wahan aa sakte ho. Kuch vaartalaap karni ho, vaartalaap to wo bhi kar sakte ho. Good night.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
3: हेलो।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: पूर्णिमा।
2: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
3: गुड।
2: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
3: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ, और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ। वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
2: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
3: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
2: आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
3: बड़े हैं।
2: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
3: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
2: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
3: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भाग।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। रेडियो मिर्ची के साथ
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर। लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
3: हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
2: हाय आचल।
3: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
2: सो आपके भाई का नाम क्या है?
3: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
2: सुमीर, और आपके साथ में है या वो इंडिया में है?
3: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
2: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
3: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
2: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
2: Wow.
3: Yeah.
2: That's amazing. And our contest
1: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association

0: मैं खत्म तो खेल खत्म. रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirch.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर. हेलो.
3: हाय,
2: व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल.
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड
2: शीतल, हैप्पी राखी टू यू.
3: सेम टू यू.
2: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
3: बहुत अच्छे से चल रही है. राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही. इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है. तो
2: ग्रेट. कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए. उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
3: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं. दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे हैं, तो दो ब्रदर है बेटे हैं और एक बेटी है. हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं. और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

से ना हो पाएगा। कौन बोला

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय।
2: हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज नैशो।
1: हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
2: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
1: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
2: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
1: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
2: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
1: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
2: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। हम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
2: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: पूर्णिमा।
1: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
2: गुड।
1: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
2: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
1: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
2: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
1: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
2: बड़े हैं।
1: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
2: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
1: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
2: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
1: Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
2: We have our next participant with us. Let's talk to him. Hello.
3: Hi, good morning, Pris.
2: Hi, good morning. Akash, is it?
3: Yes, this is me, Akash here from New York. Every day I listen to your morning Mirchi, so it's been awesome.
2: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
3: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
2: Wow.
3: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. And wahan pe acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke purani jo jitne bhi memories hai, we want to film it and unke samne present karenge and unke purane friends ko humne bulaya hai, so it will be great, you know.
2: Pura surprise hai. What do you think her reaction would be?
3: She will be like on top of the world. Kyunki bahut se connections jo hote hain jo day to day pe nahi mil pate hain aur hamare friends chut jate hain, to unko main sare unite karungi. So
2: 30-40
3: days ki planning chal raha hai ki sabko, you know, ek jagah pe unite karna hai and you know, aur unka फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर, जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Letting go का मतलब communication तोड़ना नहीं होता. आइए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: इसी से रिलेटेड एक सवाल आया सिस्टर, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कहते हैं कि क्षमा करना और भूल जाना दो तरफा होता है कि नहीं, लेकिन कब तक किसी की इनसेंसिटिविटी अपमान और दुर्व्यवहार को सहन किया जाना चाहिए?
4: दो तरफा जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हमेशा दूसरा क्या करेगा उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता.
3: अच्छा,
4: हम चाहेंगे दो तरफा हो. समझो, मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये बात नहीं पकड़नी, मैं आकर के आपको सॉरी बोलती हूँ, तो मैं चाहूंगी आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओ.
3: जी,
4: है ना. हाँ. मेरे को लगता है मैंने आज डिसाइड किया. हाँ. कि नहीं नहीं, आज मैंने रियलाइज किया कि आपने आज एक कोट ही पढ़ा कि ये तो अपने को फ्री करना है.
3: हाँ.
4: तो मैंने सारी हिम्मत जुटा करके आई केम अप टू यू एंड आई सेड आई अपोलोजाइज. अभी लेट को करते हैं.
3: हाँ.
4: अभी स्टार्ट करते हैं.
3: हाँ.
4: लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज के लिए रेडी हो. तो हम क्या करें?
3: अच्छा,
4: फर्स्ट स्टेप है क्या हम उसको लेट को करना चाहते हैं. दैट इज माई फर्स्ट स्टेप. सो आई डिसाइड कि नहीं, मुझे तो लेट को करना है, मुझे इसको और होल्ड ऑन नहीं करना है. इसको और होल्ड ऑन करने से आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट पेन. सो आई, दैट द फर्स्ट थिंग कि मुझे लेट को करना है. सेकंड, लेटिंग गो का मतलब क्या है? आई कम अप टू यू. मैं अपनी ईगो को साइड में रखकर आई कम अप टू यू, आई स्टार्ट टॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात नहीं कर रहे होते एंड आई मेक दिस क्लियर कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है. मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं पकड़ा हुआ है. थर्ड, आई गिव यू इनफ स्पेस एंड टाइम आप अपनी हीलिंग कर सके. एंड फोर्थ, मैं आपके प्रति पॉजिटिव गुड विशेस मन में भी रखती हूँ, रेडिएट भी करती हूँ, जो आपकी हीलिंग में कंट्रीब्यूट करती है.
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भरोसा टूटता है, फॉरगिवनेस की बात आती है, और बहुत जरूरी है कि भरोसा जब टूटता है सबसे पहले बातचीत बंद हो जाती है. और आप कह रही है बातचीत, कोशिश करो कि बातचीत करो, जाके उसको समझाओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. और दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी कही कि उसके तरफ पॉजिटिव विशेस भेजो, शायद उससे उसकी एनर्जी और बढ़ेगी और शायद उसको समझ में आएगा और शायद वो नेक रास्ते पे चलेगा.
4: आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये बातचीत बंद हो जाती है. पहली चीज क्या होती है, जैसे किसी ने कुछ बोला या कुछ किया, हम हर्ट होके हम बातचीत करना बंद कर देते हैं. वो बहुत डैमेजिंग होता है. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बाहर बातचीत करना बंद करते हैं.
3: हाँ, लेकिन अंदर में जारी है,
4: सबसे ज्यादा उससे बात कर रहे होते हैं.
3: अरे वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने.
4: जिस दिन आप बाहर जिससे बहुत बात नहीं कर रहे होते ना
3: उसके बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं,
4: आप ज्यादा उससे बात कर रहे होते हैं. और क्योंकि आप थोड़े से दुखी हैं, तो आप जो बात भी कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती.
3: बिल्कुल,
4: आप कह रहे होते हैं ये ऐसा है, ये बार बार ऐसा है. एंड यूजली इशू के ऊपर नहीं बहुत सोच रहे होते हैं.
3: उसी के बारे में सोच, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में.
4: व्यक्तित्व, तो वो वाइब्रेशन तो जाएगा ना. अगर आपका स्पाउस है या आपका कोई कलीग है, तो वो साइलेंस जो हो जाता है ना, घर में एक दिन बात नहीं हो रही, दो दिन बाद, वो साइलेंस बहुत डैमेजिंग होता है. वो साइलेंस जो है वो बहुत दूर करता है. और वो साइलेंस में है क्या एक्चुअली? ईगो ही तो है ना.
3: बिल्कुल बिल्कुल.
4: ईगो क्या कहते हैं, मैं क्यों, Why do I apologize? मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती तो उनकी थी. वो रियलाइज करे. और कई बार ये दो दिन तीन दिन, और कई बार हम एक छत के नीचे रह रहे होते हैं. It's very little conversation.
3: बिल्कुल सही कह रही हैं.
4: तो हम पहले तो क्यों लेट को करते हैं और हम क्यों पहला कदम बढ़ाएं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. क्या पढ़ी है मुझे? Why should I do it?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कम्युनिकेशन ब्रेक करना अक्सर डिसकंफर्ट का साइन होता है, आइए जानते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बातचीत बंद हो जाती है और वो होनी नहीं चाहिए सिस्टर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है। मेरे खुद के परिवार में, दोस्तों में मैंने देखा है। मेरी मम्मी और मेरा रिश्ता भी ऐसा था, हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे, फिर थोड़े दिन वापस बातचीत शुरू हो जाती थी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि बातचीत बंद है क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मुझे हर्ट किया और आपको लगता है कि आपने मुझे हर्ट किया, तो और ज्यादातर ईगो ही होता है कि मैं क्यों बोलूँ, उसने मुझे हर्ट किया, और उनको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझसे बदतमीजी से बात की। तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए टू गेट ओवर दिस?
4: एक ही लाइन अपने को याद दिलानी होती है, बहुत मुश्किल नहीं है। दैट दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर मी,
3: दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है।
4: इफ इट इज इम्पोर्टेंट,
3: हाँ, मैं यही, मेरा अगला सवाल यही था कि कभी कभार भी बोलता है नहीं, ये मेरे लिए मायने ही नहीं रखता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात इतनी बुरी हो जाती है, यहाँ तक पहुंच चुकी होती कि इसके अब जीने या मरने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कई बार इंसान ऐसा भी बोल देता है,
4: बाहर हम बोल देते हैं, पेरेंट भी कई बार बच्चों के लिए बोल देते हैं, पर डिसाइड कैसे करना होता है कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो। जैसे कभी कभी इसको स्मॉलर लेवल पर ले, हम ये कहते हैं मेरे को नहीं बात करनी इससे सारा दिन, नहीं करनी नहीं करनी, पर उस दिन हम बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी नहीं होते। थोड़ा सा आपका मन बार बार वहां जा रहा होगा, हर बार आपका फोन बजता है आपको लगता है उसका है, हर बार कोई मैसेज आता है उसका है, फिर आपको लगता है आधे ओके बिकॉज समवेयर तो वो रिलेशनशिप है कि नहीं है, सो यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, लेकिन नेचुरली हम कंफर्टेबल तभी होते हैं किसी भी रिश्ते में जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
3: होती है,
4: ठीक हो रहा होता है। कभी कभी हम सेपरेट भी हो सकते हैं, हम डिवोर्स लेकर के सेपरेट भी हो सकते हैं, तो भी जरूरी नहीं है हम कंफर्टेबल हो।
3: होता है कई बार,
4: हमें लगता है कि हम अलग हो जाएंगे ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके जीवन में कि हम नहीं रिजोल्व करते, हम अलग हो जाते हैं, देन आल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अलग होने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल है। और कई बार लोगों को ये भी बहुत मुश्किल लगता है कि आप अलग हो गए तो भी मेरे मन में उसी के विचार और वही बातें और वो सब क्यों नहीं जाता, मेरे मन से निकलता क्यों नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल सेपरेशन।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: मूव ऑन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को हील करना। आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: तो इस बारे में तो मेरे एक कॉलीग हैं, दोस्त भी हैं, उनके और उनके वाइफ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, डिवोर्स की बात आ गई। वो वाइफ कह रही, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू मूव अहेड इन योर लाइफ। मैं देखती हूँ कि तुम अब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि रहना तुम्हारे साथ है नहीं, डिवोर्स मैं तुमको दूंगी नहीं। और नाउ दिस फ्रेंड कॉलीग ऑफ माइन स्टार्ट लाइकिंग समबडी एल्स, वो कहते नहीं अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए जब बात यहाँ तक हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने दूंगी?
5: वो तो रिवेंज जैसा हो जाता है ना, जब कोई, जैसे हमने पहले कहा, जब कोई बहुत हर्ट होता है ना, सो दे गो टू दैट एक्सट्रीम
4: कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी,
5: कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी।
4: तो अब ऐसे इंसान को, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, अब मैं क्या कहूं उसे?
5: हमें चाहिए क्या कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी?
4: तो अब ऐसे इंसान को, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, अब मैं क्या कहूं उसे?
5: हमें चाहिए क्या?

0: उनको कोई दूसरा तरीका आता नहीं, नॉर्मली किसी को भी नहीं आता। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट होता है ना कि जो आपने मेरे साथ किया
1: मैं भी तुम्हारे
0: वो
1: साथ
0: मैं आपके साथ करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है। वो ये कर भी लेंगी, पर आपको क्या लगता है कि अगर वो दर्द में रहेंगी और फिर वो ऐसा करेंगी, सो विल शी बी ओके? Will it give a peace of mind?
1: Probably not.
0: So वो सफर भी कर रही हैं, and that is how, see, कुछ समय पहले ये होता है, अगर ये healing नहीं हो ना, hurt है ना हम, और आप जिम्मेवार हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी healing तभी है जब मैं आपको hurt करूँगी। And that is why it is so important to heal yourself, or somebody, take somebody's help to heal yourself. क्योंकि एक बार जो मुझे कई बार ये सीन नहीं भूलती है, पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल पर अटैक हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, टेररिस्ट ने आकर के अटैक किया, they started shooting. उसमें से बहुत छोटे बच्चे थे जिन्होंने बहुत नजदीक से अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा, फियर देखा, टेरर देखा, सब कुछ देखा उन्होंने। अब वो बहुत डर गए, उसके बाद वो जो मीडिया थी वो उनके इंटरव्यू ले रही थी, उसमें से एक इंटरव्यू बार बार टीवी पर आ रहा था, यू नो हाउ दे कीप फ्लैशिंग द सेम थिंग अगेन। उसमें एक बच्चा था जो एक लाइन बार बार कह रहा था, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा। नाउ उस इनोसेंट एज में उसके साथ कुछ हुआ, कुछ हुआ, उसने बहुत हर्ट क्रिएट किया। अगर इस बच्चे के किसी ने हीलिंग नहीं करी, इसने खुद नहीं करी और किसी ने नहीं करी, आपको क्या लगता है ये बच्चा बड़े होकर के क्या चांसेस है?
1: बुरे राह पे जाएगा।
0: ऐसे ही टेररिस्ट नहीं होता कोई, एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी। आज वो इनोसेंट है, लेकिन आज किसी के साथ कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, फिर वो हर्ट, एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, फिर कब आप उसका हिस्सा बन जाते हो
1: पता नहीं चलता,
0: आपको पता नहीं चलता। सो बेसिकली जो उस हस्बैंड ने विमेन के साथ किया वो राइट नहीं था, दैट वाज व्हाट मेड हर मिजरेबल, बट आज वो उससे अलग करने के जगह क्या चूज कर रही है,
1: अपने आप को भी हर्ट कर रही है और सामने वाले को। एक आपने
0: ये चीज आप हमें हमेशा समझना है कि अगर हम हर्ट हैं तो चाहे हमारा लव्ड वन भी हमारे सामने, हमारा बच्चा भी है, पर अगर हम दर्द में हैं तो हम उनको दर्द ही देंगे। फिजिकल चीजों में ऐसा हो सकता था, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं आपको बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, मैंने बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, मैं अपने बच्चे को दे देता हूँ, सो मेनी थिंग्स, ये मुझे नहीं मिला मैं आपको दे देता हूँ, मुझे ये नहीं मिला मैं आपको दे देता हूँ, पर प्यार खुशी में ऐसा नहीं होता,
1: जो मेरे पास है वही मैं दे पाऊंगा,
0: जो मैं हूँ वही आप तक रेडिएट होगा। तो अगर मैं मिजरेबल हूँ, समझो कोई घर में मदर है, मैं मिजरेबल हूँ अंदर किसी भी कारण से, मैं वो ही अपने परिवार को रेडिएट कर।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
6: हाय, हाउ आर यू?
5: आई एम गुड, हाउ आर यू?
6: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
5: हाय आचल।
6: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
5: सो आपके भाई का नाम क्या है?
6: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
5: सुमीर, और के साथ में है या वो इंडिया में है?
6: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
5: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
6: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती हैं वो सब रिवाइव हो जाती हैं। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
5: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
5: Wow.
6: Yeah.
5: That's amazing. And our contest
4: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and

0: diamond jewelry, visit viranijewelers.com.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: अगर आप फील ही नहीं कर रहे हैं तो हील कैसे होंगे? आइए इस सच को समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: आपने एक और अच्छी बात कही कि अगर जब मैं हर्ट हूँ, जब मैं ऐसे स्थिति में हूँ जहाँ मुझे लगता है किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा या गलत काम किया, उसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजो आप। लेकिन कभी कभी लगता है यार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं हर्ट हूं, मैं क्यों पॉजिटिव एनर्जी भेजूं उसकी तरफ?
5: वो तो बहुत बाद का स्टेप है। पॉजिटिव एनर्जी, आप हर्ट हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेज सकते। हाँ। आप बीमार हैं तो आप किसी को ठीक नहीं कर सकते।
4: बिल्कुल,
5: आप बीमार हैं।
4: हाँ,
5: और आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकते।
4: बिल्कुल,
5: तो बीमार को पहले क्या करना पड़ेगा?
4: खुद ठीक होना पड़ेगा।
5: आप सीधा सोचें कि मैं उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजूं। ये ना कहने में होता है कि हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें, ये कोई भेजने की चीज नहीं होती। जैसे घर में अगर कोई स्वस्थ है और उसको सामने दिखाई दे रहा है कोई बीमार है, तो वो नेचुरली उसको कहता है ना, लाओ मैं कर देता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो सामने से कोई कहता है, लो मैं आपको उठा करके दे देता हूँ। ऐसे ही अगर कोई अंदर से दुखी है, वो ये भूल जाए उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, वो बात की बात है। वो पहले ये सोचे कि मुझे अपने को कैसे ठीक करना है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मेरे साथ में हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, 14 year old, लेट्स टॉक टू हिम। हाय वत्स।
2: हाय।
1: सो टेल मी, व्हाट डू यू लव अबाउट राखी?
2: द वन थिंग आई लव अबाउट राखी इज दैट द होल डे आई गेट टू लाइक स्पेंड टाइम विद माय सिस्टर एंड लाइक एक्चुअली लाइक टॉक, cuz like she's on to like college, right? So she's always away. I have like fun time with her, and then the part when like gives me the laddu to eat and like puts it into my mouth, the whole thing.
1: So what I understood is that you are in school and she's gone to college, she stays away.
2: Yeah.
1: Oh, so for Rakhi she comes back home.
2: Yeah.
1: Wow, so that actually is very special. Every Rakhi she comes back home. And what is your best Rakhi memory? Can you share it with us?
2: My best Rakhi memory would be probably when I was like 5, because like I used to watch this show Motu Patlu a lot. She got me this like Motu Patlu Rakhi team, like this Rakhi team, right? I was like so surprised because like I loved that show when I was like that age.
1: So do you and your sister relate to any of the characters, like you are the Motu or she is the Patlu, something like that?
2: Yeah, exactly.
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
4: गिला शिकवा रखना या छोड़ना, ये आपकी मर्जी होती है। आइए समझते हैं।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
6: तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत महीने साल हफ्ते गुजर जाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जब तक हम ये जरूरी है कि जब तक हम उस हर्ट से नहीं निकले हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे।
7: नहीं, दूसरों को फॉरगिव नहीं करना है, पहले किसको फॉरगिव करना
6: है? खुद को करना है।
7: जैसे मैंने खुद को फॉरगिव किया, आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट पेन, तो फिर दूसरे को फॉरगिव करने के बाद कहाँ से आई?
6: बट अक्सर तुम कहते ना आई फॉरगिव यू,
7: वो हम कहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा माइटी फील होता है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, एक बात हम समझे, अगर कोई कमजोर है ना, वो हमेशा अपनी दर्द का जिम्मेवार किसी और को ठहराना चाहता है। एंड ओनली व्हेन वी कम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ हम रियलाइज करते हैं कि लोग बाहर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मन में घुस करके आपको दुखी नहीं कर सकते। सो यू हैव चोजन टू बिकम प्रिजनर ऑफ योर माइंड। घुस सकते हैं आपके मन में। आप अभी बात कर रहे थे कि गाड़ी चलाते कभी कभी तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा आ सकता है, कितनी भी कोई गलत गाड़ी चला सकता है। लेकिन जो आप अभी जो सारे के सारी बातें सुना रहे थे, क्या क्या मन में चलता है उस समय?
6: इरिटेशन।
7: नहीं, थॉट क्या था
6: कि वो ऐसा क्यों कर रहा है,
7: ऐसे क्यों कर रहा है, उसके कारण
6: मेरे गुस्सा आ रहा है,
7: मेरी जान जाएगी, उसके कारण उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे भुगतना पड़ेगा। वो तो आपके मन में घुस के नहीं है थॉट क्रिएट कर रहा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, you have to take care of your body, and you have to bless them. आप भी ठीक ठाक घर पहुंचाओ। आप हेट भी कर सकते हो, आप उसको ब्लेस भी कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं, ये चॉइस है। कितना भी डिफिकल्ट आपको अभी लग रहा है, पर चॉइस है कि नहीं है उस समय पर।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: नो
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रांसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
18: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर इंसिडेंट के पीछे एक पूरी सिचुएशन होती है। आइए उस पर्सपेक्टिव को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है मैं एक बार गाड़ी चला रहा था दिल्ली की सड़कों पे और मथुरा रोड पे था, और सामने मेरे सामने एक और गाड़ी थी उनके ठीक पीछे था, और मेरे सामने जो गाड़ी थी उसके सामने एक स्कूटर पे एक मियाँ बीवी शायद जा रहे थे, और उन्होंने हल्के से उनको टच करके वो लोग गिर गए, और गिर करके ये भाई साहब जो हैं जो गाड़ी चला रहे थे वो निकल गए। अब उनके पीछे मेरी गाड़ी थी, तो मैंने जब ये सीन देखा मैं गाड़ी से उतरा और मैं उनको हेल्प करने गया। उनको लगा मैंने उनको धक्का दिया है, तो वो मुझे ही पकड़ के मुझे मेरा कॉलर वॉलर पकड़ा और बोला कि ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। तो क्या होता है कि जब आप कह रहे हैं कि आप उनको ब्लेस करो, आप बोलो एक्सेट्रा, कभी कभी आप गलत सिचुएशन में ही फंस जाते हैं। मैं मदद करने जा रहा हूँ, उल्टा वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तो ऐसे में क्या करें आप?
4: हमारी गुड विशेस थे, हमने उनको हेल्प करी, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी अभी उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अभी थोड़े से
3: हिले हुए हैं,
4: वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने समझा आपने ऐसा किया है, आपने क्या करना है, आपने हेल्प करी और आपने उनको एक्सप्लेन किया कि आई वॉजंट द पर्सन। देखो, जैसे मैं अभी अभी आपसे बात करते करते गिर जाऊं, तो आप पहले क्या करेंगे?
3: आपकी मदद करने जाऊंगा।
4: आप मुझे उस समय समझाने नहीं जाएंगे कि आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। भले मैं अपनी गलती से गिरी, मैं सड़क पर चलते चलते मोबाइल देखते देखते मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं गिर गई।
3: पहले आपको उठाएंगे,
4: आप सबसे पहले मुझे उठाएंगे, मेरे को देखेंगे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब आप मेरा ध्यान रख लेंगे उसके बाद मुझे आप
3: समझाएंगे।
4: अगर जिस समय मैं दर्द में और आप मुझे समझाना शुरू कर दें कि आपको देख के नहीं चलना चाहिए, फोन पे बात करते हुए चलना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, मुझे आपकी बात समझ में आएगी?
3: नहीं आएगी।
4: वो उस समय किस में है?
3: दर्द में।
4: उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, पर इतना हमें तो समझ में आ रहा है ना कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो हम गए उनको हेल्प करने के लिए और हमने हेल्प किया। हमारी वो क्वालिटी है हेल्प करना। सड़क पर आजकल लोग नहीं करते हैं, आजकल वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं। वो लगते हैं कहीं पुलिस केस ना फंस जाए, हम ना उसमें फंस जाए। आपने एक अच्छा कर्म किया। जब उनको ये चीज रियलाइज होगी कि ये आपने किया, उसके कारण उनको उनकी जान बची, फिर वो क्या करेंगे?
3: फिर वो शायद बहुत आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन मैंने जो सिचुएशन पूछा था कि वो उस समय वो देख नहीं पा रहे थे, वो तो देख रहे थे कि भाई साहब ये है, इसी ने मुझे गिराया है, इसको मारो पहले। और मैं कह रहा हूँ मैं तुमको, तो वो सुन नहीं रहे थे, तो मुझे दो चमाटे पड़े भी, और मैंने कहा छोड़ो भाई आपसे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर गाड़ी से लेके निकल गया। So, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी कभी स्थिति जो होती है वो हमेशा आइडियलिस्टिक नहीं होती है।
4: नहीं होती आइडियलिस्टिक स्थिति, आइडियलिस्टिक नहीं होती है। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
11: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
12: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: क्या कोई सिचुएशन आपके रियल इमोशंस को ओवरपावर कर सकती है? आइए एक्सप्लोर करते हैं.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
4: एक्चुअली जो आप कह रही थी कि कभी मैं किसी को देखता हूँ ऐसी स्थिति में, तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही होता है कि उनको हेल्प करूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, यार आज ऐसा नहीं हो जाए, क्या करें. तो ये कश्मकश चलती रहती. कई बार मैं उतरता हूँ गाड़ी से, और कई बार जब भीड़ भड़ाका दिखता है मुझे, मैं नहीं रहता.
5: हमें कई बार ना सिचुएशंस को इतना पकड़ के नहीं रखना चाहिए लाइफ में. हमें उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके एक बार ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था. जैसे उन्होंने, इट इज जस्ट वन अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो गिरे थे, वो दर्द में थे, वो परेशान थे, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. सारे के सारे जिनके साथ एक्सीडेंट हो रहा है
4: वो हर बार ऐसा नहीं करने वाला. लेकिन जब वो सेम स्थिति मेरे साथ फिर हो, तो मुझे तो अपनी गलतियों से ही सीखना है ना.
5: लेकिन आपको उस गलतियों से एक नया एक्सपीरियंस बनाना है ना. वही तो हमने उस चीज को डाइसेक्ट, हमने क्यों उस प्रॉब्लम को देखा, हमने समझा कि वो उस समय किस में थे. फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट चेंजिंग ट्वीकिंग अ सिचुएशन लिटिल बिट. आजकल हम देखते हैं कि कई बार डॉक्टर्स के साथ वायलेंस बहुत हो जाता है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डॉक्टर्स के साथ कई बार वायलेंस हो जाता है, जो पेशेंट्स की फैमिली है वो वायलेंट हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स बहुत फियर में रहते हैं. किसी एक के साथ कहीं पर केस हो जाता है तो उनको एक डर रहता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो पेशेंट की फैमिली है वो वायलेंट क्यों हुई थी उस समय पर. बिकॉज किसी का कोई है, मरने पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सारा जीवन फियर में बिताएं और अपना प्रोफेशन छोड़ दें.
4: बिल्कुल नहीं है.
5: वो डॉक्टर ये भी तो चूज कर सकता है ना कि किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, किसी भी समय वायलेंस हो सकता है, मैं नहीं करता, मैं नहीं लोगों को बचाता. वो ऐसा करेगा?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं. वो कहते हैं भाई जब तक आप हमारी सेफ्टी नहीं इंश्योर करेंगे, तब तक हम ओटी में नहीं जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स नहीं खुलेंगे. तो ये भी एक तरह का प्रोटेस्ट होता है.
5: तो आप सेफ्टी इंश्योर करेंगे, आप पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, पर आप वो करना तो नहीं छोड़ देंगे ना.
4: बिल्कुल.
5: आप पैनिक बटन्स लगाएंगे, आप सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे, आप पुलिस और बढ़ा देंगे, आप सब कुछ करेंगे. बट क्या आप एक एक्सपीरियंस के कारण वो छोड़ देंगे?
4: बिल्कुल नहीं. लेकिन ये जो एग्जाम्पल आप ले रही है उसका, उनका प्रोफेशन है लोगों की मदद करना. मेरा प्रोफेशन सड़कों पे लोगों को उठाना नहीं है.
5: आपका प्रोफेशन नहीं है, पर मदद करना आपकी एक
4: नेचर है, आदत है,
5: उसके लिए आप करते थे.
4: बिल्कुल.
5: लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो प्लीजिंग नहीं था.
4: हाँ.
5: जैसे उनके साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ जो प्लीजिंग नहीं है, क्या वो प्रोफेशन छोड़ देंगे? नहीं
4: छोड़ेंगे.
5: आपको हेल्प करना छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये आपकी एक चॉइस है.
4: चॉइस है. तो हर बार मैं सोचता हूँ.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्प करते रहना एक रेयर क्वालिटी है, इससे कभी मत छोड़िए। आइए समझते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन जैसे
2: मेरे विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन जैसे मेरे कजन है वो

0: आप किसी पुलिस प्रोफेशनल को बुला सकते हैं, आप चार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैं वो चीज करूं कि उनका वैसा रिएक्शन नहीं हो, वो उस चीज को गलत नहीं ले, पर आप क्या कह रहे हैं, मैं मदद करना छोड़ दूं। जैसे वो डॉक्टर कहे कि मैं पेशेंट को ट्रीट करना बंद कर दूं। एक है हम इंश्योर करें कि कैसे वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जो है वो और सेफ हो सके। एक है हम ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम हेल्पिंग समबडी, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो एंड हाउ आई कैन टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। और एक है कि मेरे साथ अगर एक बैड इंसिडेंट हो जाए तो मैं वो करना ही छोड़ दूं। एक बार साइकिल से गिर गया तो मैं साइकिल चलाना ही छोड़ दूं। मेरा एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मैं गाड़ी चलाना ही बंद कर दूं। और फिर उसमें मैं ये एग्जांपल दूं कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे सीख जाना चाहिए था ना, कि मैं गाड़ी चलाता हूं तो एक्सीडेंट होता है तो फिर मुझे दोबारा कभी चलानी नहीं चाहिए। बट हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम कहते एक बार जो हुआ उससे आप सीखो कि वो गलती दोबारा नहीं हो। पर हम ये थोड़ा ना कहेंगे बच्चे आप साइकिल चला ही नहीं सकते, आप दोबारा साइकिल चलाओ ही नहीं, ये तो एक फिजिकल चीज की बात है। हम तो अच्छे अच्छे गुण को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेल्प करने की क्वालिटी इट्स अ रेयर क्वालिटी टुडे, इट्स अ रेयर क्वालिटी। और आप अगर अनजान लोगों की भी जाकर के मदद कर रहे हैं तो कितनी डिवाइन क्वालिटी है। तो ये इंश्योर करने की जगह कि हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो, आई एम चूजिंग कि आई विल नॉट हेल्प अदर्स ओनली। फिर मैं ये सोचूंगा तो फिर मैं अपनी फैमिली को भी वो सिखाऊंगा, फिर वो भी आगे सिखाएंगे, तो फिर एक दिन तो ऐसा हो जाएगा कि हम किसी की हेल्प ही नहीं करेंगे।
1: तो आप कह रही हैं कि हेल्प करो, पिट जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हेल्प करने की कोशिश जरूर करो।
0: नहीं आपके साथ एक बार कुछ हुआ, आप कुछ ऐसा करें कि दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो। आप उस समय पर पुलिस, नियरेस्ट पुलिस को भी बुला सकते थे, आप लोगों को भी बुला सकते थे, आप बहुत कुछ और कर सकते थे जो आपको लगा शायद आपने उस समय नहीं किया। आप अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी उस समय ले लेते, यू नो समटाइम्स टू एन एक्सटेंट हमें दिखाई दे रहा होता है कि कोई एक्सीडेंट है, हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं, चलो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, हम कहते हम नहीं, पर हम वो भी नहीं करते हैं, हम वो भी नहीं करते।
1: Of course,
0: हैं।
1: Of course.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर? लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
2: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
1: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
2: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर, ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर, लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. Oh, they used to get from bank. We used to eat those ghevar.
1: So, aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
2: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So, yeah, we miss those days. Yeah.
1: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे।
2: एग्जैक्टली, या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशन सो क्विकली यू नो विद, सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर. हेलो.
3: हाय,
2: व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल.
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड
2: शीतल, हैप्पी राखी टू यू.
3: सेम टू यू.
2: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
3: बहुत अच्छे से चल रही है. राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले हैं मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही. इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है. तो
2: ग्रेट. कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए. उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
3: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं. दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे हैं, तो दो ब्रदर है और बेटे हैं और एक बेटी है. हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं. और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Mirchi Mornings, yeah. Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
5: This golden hour is brought to you by Tanishq. Suneheri hogi drive. Jab Tanishq gold jewelry se, suneheri hogi har vibe.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. You're officially tuned into Mirchi Mornings. आज है रक्षा बंधन, वो ब्यूटिफुल फेस्टिवल जहाँ पर सिस्टर्स गेट अ राखी, ब्रदर्स गेट एन इमोशनल स्पीच और फिर दोनों मिलकर अमेजोन पे गिफ्ट का लिंक भेजते एक दूसरे को. लेकिन ऑनेस्टली यार, राखी इज नॉट जस्ट अबाउट भाई मेरी रक्षा करेगा, इट्स अबाउट दैट वन पर्सन हु विल रोस्ट यू मर्सिलेसली, स्टील ऑल योर फूड, एक्सपोज योर चाइल्डहुड एम्बैरेसिंग स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. लेकिन द सेकंड समवन एल्स मेसेज विथ यू, तब वो सामने खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है कि एक्सक्यूज मी, वो जैसा भी है या जैसी भी है मेरा वाला है, उसे मेरे अलावा कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोस्ट नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता. और अगर तुम फिलहाल फैमिली से दूर हो, टुडे इज योर रिमाइंडर, कॉल दैट सिबलिंग, कजन, बेस्टी, जिसको भी तुम राखी से रिलेट करते हो, चाहे वो तुम्हारा चोजन फैमिली मेंबर हो या फिर गॉड गिवन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया और गिफ्ट का स्क्रीनशॉट भेज ना, बिल्कुल मत भूलना. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. वी गॉट अमेजिंग म्यूजिक कमिंग अप, ढेर सारी मस्ती एंड योर मॉर्निंग डोज ऑफ अपडेट्स अलोंग विद माय बैंटर विद यू. तो अभी जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपकाए रखो एंड गो एंड फॉलो मी. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
1: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, you're listening to Priscilla on Mirchi Mornings. और चलो अब देखते हैं मदर नेचर का मूड आज कैसा है. राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 71 डिग्रीज फारेनहाइट तक. यानी कि ह्यूमिडिटी का वो क्लासिक देसी लॉजिक, टेम्परेचर कुछ और होगा, बॉडी को कुछ और फील होने वाला है. 11 बजे तक क्लाउड्स थोड़े से ब्रेक लेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पार्टली क्लाउडी कंडीशंस. आज का टेम्परेचर जो है उसका रेंज है 67 से लेकर 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 68 से लेकर 84 डिग्रीज फारेनहाइट तक. कल का हाई था 78 डिग्रीज फारेनहाइट, आज का हाई पहुंचेगा 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक. सो आज थोड़ा सा वार्मर, थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक लगने वाला है. एंड गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन इज 0 मिलीमीटर्स. कल जो 62 मिलीमीटर्स की बरसात हुई है उसके बाद बादल जो है वो आज छुट्टी मना रहे हैं रक्षाबंधन की. लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप है, फ्लड वॉच है विद कंडीशंस एक्सपेक्टेड अराउंड 12 PM. और जल्दी से तुम्हें याद दिला दूं, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. ये कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर जिसमें पार्टिसिपेट करके तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स कर्सी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो राखी RAKHI along with your full name and bhej do se 9033 mirchi par, that's 9033647244, and to mujhe dm bhi kar sakte ho. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS instagram or x par, in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Check out their festive special offers going on, 22 carat gold and diamond jewelry, ya phir visit karo viranijewelers.com par. And abhi mirchi dar bangers ka time hai only on Mirchi Mornings. Mirna I'm here, Priscilla. Stay tuned and stay hot.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज फोरम।
1: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
2: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल।
1: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
2: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
1: व्हाट्स हर नेम?
2: हर नेम इज महक।
1: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
2: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
1: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
2: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
1: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
2: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो वो आपको सुनती है काफी बार। उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
3: भैया मेरे राखी के।
4: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
11: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
16: 13 सप्टेम्बर रविवार
15: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
17: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग First time home buyers also offering zero closing cost refinance option. For more information call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
10: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
10: Moral of the story, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
4: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है. हाय.
5: हेलो, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड. व्हाट्स योर नेम?
5: माय नेम इज नैशो.
4: हैप्पी राखी टू यू.
5: सेम टू यू.
4: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
5: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर.
4: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
5: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है.
4: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
5: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा.
4: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
5: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं. बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ. लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग. सम लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं. बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा. फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं.
4: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग.
5: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है. मैं जो देता हूँ वो ले लेती है.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष. संतोष
1: संतोष
2: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं.
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
2: डू? I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: भैया मेरे राखी के.
5: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
8: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए जोहो वन सही है. जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. जोहो वन इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
17: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड डू यू नो इंडिया हैज फिनिश्ड फिफ्थ एट द 2026 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर बीटिंग जर्मनी 3-1. एंड दिस इज पर्टिकुलरली बिग बिकॉज इट्स इंडियाज बेस्ट फिनिश इन 52 years. यस, यू हर्ड मी राइट, 52 years. आवर लास्ट बेस्ट फिनिश वॉज वे बैक इन 1974 when India came fourth. And what a finish, man. Ishika Chaudhary opened the scoring in the 42nd minute and then Navneet Kaur said, okay, ab meri bari hai, scoring twice in the 44th and the 47th minute. India ne miss out kiya hai on the semi-finals after that goalless 0-0 draw with Australia. Lekin instead of sulking, they came back and absolutely owned the fifth place match. And that's the kind of comeback we all love. है ना, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, बस अगले क्वार्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है. एंड स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट डिजर्व अ सेलिब्रेशन, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर चल रहा है तनिष्क पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स और वहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस. अगर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी वहां पर पहुंचो. एंड इफ यू हैव एनी ओल्ड गोल्ड लाइंग इन योर लॉकर एट योर होम, उसे लेकर जाओ, एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन वहां पर मिल रहा है तुम्हें. टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड. तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है अभी फिलहाल, चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Oh, ये तो दुकान
2: है पाजी,
1: आप क्या लेने आए हो?
2: शुद्ध देसी घी।
1: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
2: घी टेस्ट के लिए थोड़ो खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
1: नानक घी पाजी,
2: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
3: फूड
4: यस,
3: शॉपिंग
4: यस,
3: एंटरटेनमेंट
4: डबल यस,
3: और हेल्थ फेयर
4: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
5: फॉर वेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
6: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट RK ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: MSG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर। लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
3: हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
2: हाय आचल।
3: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
2: सो आपके भाई का नाम क्या है?
3: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
2: सुमीर, और आपके साथ में है या वो इंडिया में है?
3: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
2: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
3: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
2: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
2: Wow.
3: Yeah.
2: That's amazing. And our contest
1: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
4: Mirchi par chal raha hai Mirchi Karega Bandhan Pura contest, lekin hamari agle contestant ka naam nahi pata hoga tumko, to pata karte hain unhi se. Hello.
5: Hello.
4: Hi, what's your name?
5: Purnima.
4: Hi Purnima, how are you?
5: Good.
4: Great. Kya kar rahe ho rakhi ki taiyari mein?
5: Rakhi mein main mere bhai यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
4: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
5: हाँ, एक दो स्वीट मैं हाथे से बनाती हूँ।
4: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
5: बड़े हैं।
4: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
5: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
4: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
5: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
3: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
1: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
0: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
1: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
5: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
4: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
5: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर गोल्ड का रेट अपडेट।
2: rajjewels.com विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग, आल्सो हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गोल्ड $4,600 $4,600 पर ट्रांसलेट कर रहा है। जब आप राखी सेलिब्रेशन के लिए अपनी बहन के लिए खूबसूरत सा तोहफा घर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आइए 22 कैरेट गोल्ड 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड के साथ वो खूबसूरत सी ज्वेलरी 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में आज पसंद करके अप्रूव होके घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें। वो रक्षाबंधन का तोहफा जो खूबसूरत और यादों से भरा हमारी मेमोरीज क्रिएट करे, rajjewels.com को खुशियों में शरीक रखें। थैंक यू।
1: मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ, बने रहो।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: Mirchi Mornings with Priscilla, only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
3: Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
4: We have our next participant with us. Let's talk to him. Hello.
5: Hi, good morning, Pris.
4: Hi, good morning. Akash, is it?
5: Yes, this is me, Akash, here from New York. Every day I listen to your morning Mirchi, so it's been awesome.
4: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
5: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
4: Wow.
5: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. And wahan pe acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है, वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे. एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है, तो इट विल बी ग्रेट, यू नो.
4: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
5: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, तो उनको मैं सारे यूनाइट करूंगी. तो 30-40 डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है. एंड और उनका सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर, जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. Priscilla here, bringing you your daily dose of Rashis on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी कि मेष राशि वर्क पर इक्विपमेंट ग्लिच या टची कोवर्कर मूड खराब कर सकता है. डीप ब्रेथ लो, लॉन्ग वॉक स्लो एंड रिप्लाई ऑल से पहले दो बार सोच लो. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पैसा और पर्सनल बिलोंगिंग्स पर नजर रखो यार. वॉलेट को वेकेशन पर मत भेज देना. मेडिटेशन तुमको ग्राउंडेड रखेगी. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, रूटीन और अथॉरिटी से रिबेलियन का मूड हो सकता है. वर्ड को फिल्टर करके यूज करो. हर थॉट को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना जरूरी नहीं होता है. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 7. कैंसर यानी कर्क राशि, आज इंपल्स कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. ड्राइव केयरफुली, स्पीक थॉटफुली और अननेसेसरी ड्रामा को नॉट इंटरेस्टेड बोलकर स्वाइप कर दो. लकी कलर इज बेबी ब्लू. लकी नंबर इज 19. लियो यानी कि सिंह राशि, हेल्थ थोड़ी सी स्लो कर सकती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टास्क को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर लो. आज लायन को भी पावर नैप अलाउड है. लकी कलर इज सनफ्लावर येलो एंड लकी नंबर इज 33. वर्ग यानी कन्या राशि, क्रिएटिविटी और करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग चांस है. दो माइनर हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स बॉदर कर सकते हैं. आइडियाज को नोटबुक में कैप्चर करो. ब्रेन का ऑटो सेव रिलायबल नहीं होता है. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 11. मैं हूँ प्रिसिला, मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है. I'll be back with Rashi Zone Part 2. Stay tuned and stay hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
2: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा. अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता. नया घर लो कराओ मुंह मीठा. नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा. ये मिठास खुशियों की है. ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे. ले आपको तो भूल ही गए. इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा.
3: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
12: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
11: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 7323578200. જય ગુરુદેવ.
13: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
14: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And I'm back with Rashi's own part 2. Mera naam hai Priscilla. Ye hai Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi's own.
1: Libra yani tula Rashi, anger ya sharp emotion ko control mein rakho, specially jab expenses badh rahe ho. Budget ko ignore karna romance nahi hota hai, financial horror story hota hai. Lucky color is royal purple, lucky number is 26. Scorpio yani ki vruchik Rashi, friends ke saath celebration ya shared happiness tumko deep joy dene wali hai. Aaj apne logo ko hug karo, unke saath time spend karo. Scorpio hugs usually limited edition hote hain. Lucky color is burgundy, lucky number is 9. Saturday एरियाज यानी धनु राशि, फिजिकल एलिमेंट से रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, सो एक्टिव प्लान्स और स्पोर्ट्स में कमबैक पॉसिबल है. बस वार्म अप को ऑप्शनल मत समझा करो. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 41. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रैश बिहेवियर से क्लोज फ्रेंड्स अपसेट हो सकते हैं. स्पाउस या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम कंफर्ट देगा. फोन साइड में रखो दिल अपनी हथेली में. लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 18. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट डे है आज. बट ट्रेड या बिजनेस हैंडल करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहो. चिल मोड अच्छा है, ऑटो पायलट मोड अच्छा नहीं है. लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 32. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस मेरी जान, फुल मून इमोशंस को एम्पलीफाई करेगा. पर्सनल रिलेशनशिप को अपनी एक्सपेक्टेशंस पुश करने के लिए यूज ना करें. प्यार नेगोशिएशन टेबल नहीं होता है. लकी कलर इज मूनस्टोन सिल्वर, लकी नंबर इज 5. एंड दिस इज इट फॉर राशि जोन. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. फॉलो मी एट मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: बिल्कुल जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर। लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
3: हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
2: हाय आचल।
3: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
2: सो आपके भाई का नाम क्या है?
3: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
2: सुमीर, और के साथ में है या वो इंडिया में है?
3: वो यहीं पर है, लोकली है, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
2: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
3: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो या वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
2: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
2: Wow. That's amazing. And our contest
1: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Apne sapno ki uchai ko chune ke liye AIIMS Education hamesha aapke saath hai.
6: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट. हेलो.
3: हाय, माय नेम इज संध्या. हाउ आर यू प्रिसिला?
2: हाय संध्या, आई एम गुड. हैप्पी राखी टू यू संध्या.
3: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम. दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर लाइक यू नो like we used to sit together and put rakhis on my brother. And then we used to get like you know all those karare note. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well abhi to sirf we just order online and then they get it and then they you know video call and then we just you know just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay, and that's kind of the sad reality of life. अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
3: एग्जैक्टली. या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, नाम क्या है?
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं।
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
2: दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: भैया मेरे राखी के,
5: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
6: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
12: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
11: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
12: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसी चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे है वो भी आने वाले है। दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है और बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज फोरम।
1: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
2: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल।
1: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
2: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन। Oh,
1: what's her name?
2: Her name is Mehak.
1: Mehak, what a beautiful name. Tell me, आप कैसे मनाते हो राखी?
2: मैं usually अपने family के साथ मनाती हूँ with Mehak. हम लोग उसका favorite खाना sweets खाएंगे and you know बाहर जाएंगे.
1: क्या है Mehak का favorite मिठाई?
2: Oh, Mehak रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है.
1: So Mehak आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, and have you told her what राखी means? Like राखी का क्या महत्व है?
2: She's blind and mentally challenged. So, उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है. तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार. उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं, हम साथ में खाना खाएंगे और बस.
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Yabala. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yeah, Jadeep.
1: Hanji.
2: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी.
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
2: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर हैं, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम. कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँगा आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो कर रहा है कर. तू तू तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: भैया मेरे राखी के.
4: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
5: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
6: 13 सप्टेम्बर रविवार
5: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.

0: वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे. इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक.
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय।
2: हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज नैशो।
1: हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
2: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
1: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
2: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
1: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
2: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
1: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
2: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। हम लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं, बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
2: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
3: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
4: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
3: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
5: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
6: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सेप्टेम्बर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ.

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
3: हाँ जी,
4: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए, नाम क्या है?
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं, कोई बात नहीं।
4: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
4: डू? I am an entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। Anjika, this is Naved. I'm calling from Radio Mitch. God bless you. आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
7: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
8: हेलो,
7: हाय, व्हाट्स योर नेम?
8: पूर्णिमा।
7: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
8: गुड।
7: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
8: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ, और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
7: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
8: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
7: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
8: बड़े हैं।
7: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
8: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
7: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
8: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
6: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
9: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: ओ दलजी, तो दुकान बड़ी भाई, आप क्या लेने आए हो?
12: शुद्ध देसी घी।
11: लो भाई, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
12: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
11: नानक घी पाजी,
12: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
9: फूड?
13: यस।
9: शॉपिंग?
13: यस।
9: एंटरटेनमेंट?
13: डबल यस।
9: और हेल्थ फेयर?
13: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉडर्नविल।
14: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
15: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Jai Gurudev, अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
5: 13 सप्टेम्बर रविवार
4: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
9: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Bachpan ka wo reshmi dhaga ab badal gaya hai ek timeless diamond mein. This Rakhi, get unlimited offers at RK Jewels. Best quality, best price.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मूवी का नाम बॉबी और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंकरप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे हाफ श्रेया के साथ और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स डायरेक्टर्स लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया। एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: बाहर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: We have our next participant with us. Let's talk to him. Hello.
3: Hi, good morning, Pris.
2: Hi, good morning. Akash, is it?
3: Yes, this is me, Akash, here from New York. Every day I listen to your morning mirchi, so it's been awesome.
2: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
3: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
2: Wow.
3: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. And wahan pe acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है तो इट विल बी ग्रेट यू नो
2: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
3: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो उनको मैं सारे यूनाइट कर रही हूं.
2: 35-40
3: डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है एंड और उनका सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
5: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
4: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
5: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
6: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपरस्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया, बैक टू बैक चल रही हैं। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है, ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज द बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: होली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये कमलेश जी।
3: हाँ जी, कौन?
4: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
4: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उस पर पुताई होनी है।
3: देखिए,
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं, हमने कब लिया आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time to 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue.
5: 750 only? Yes, sir, absolutely.
4: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Yeah, paka.
6: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
7: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
8: हाय, हाउ आर यू?
7: आई एम गुड, हाउ आर यू?
8: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
7: हाय आचल।
8: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
7: सो आपके भाई का नाम क्या है?
8: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
7: सुमीर, और के साथ में है या वो इंडिया में है?
8: वो यहीं पर है, लोकली है, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
7: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
8: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती हैं, वो सब रिवाइव हो जाती हैं। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
7: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
7: Wow. That's amazing. And our contest
6: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
9: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
10: Bhai behan ka rishta hota hai priceless. To rakhi ki koi kimat kyun ho?
11: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
14: सिमरन, तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेनु टाइम नहीं दे सकया।
15: नहीं राज, अपने विच पहला वर्कआउट कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए, कुछ है जो इतने सालों विच नहीं बदलया है कुछ?
14: नानक रसमलाई, हाँ सिमरन हाँ, नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साढ़े व्याह तो पहला सी।
5: राज
14: सिमरन
16: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
17: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्सा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
13: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देख, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेस में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते आए। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA with Love।

सत्यगतिस्कृता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंगता खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: मेरे साथ में हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, 14 ईयर ओल्ड। लेट्स टॉक टू हिम। हाय वत्स।
3: हाय।
2: सो टेल मी, व्हाट डू यू लव अबाउट राखी?
3: द वन थिंग आई लव अबाउट राखी इज दैट द होल डे आई गेट टू लाइक स्पेंड टाइम विद माय सिस्टर एंड लाइक आई एक्चुअली लाइक टॉक because like she's on to like college, right? So she's always away. I have like fun time with her, and then the part where like gives me the laddu to eat, and, like puts it into my mouth, the whole thing.
2: So what I understood is that you are in school and she's gone to college. She stays away.
3: Yeah.
2: Oh, so for Rakhi, she comes back home.
3: Yeah.
2: Wow. So that actually is very special. Every Rakhi, she comes back home. And what is your best Rakhi memory? Can you share it with us?
3: My best Rakhi memory would be probably when I was like 5, because like I used to watch this show Motu Patlu a lot. She got me this like Motu Patlu Rakhi team, like this Rakhi team, right? I was like so surprised because like I loved that show when I was like that age.
2: So do you and your sister relate to any of the characters, like you are the Motu or she is the Patlu, something like that?
3: Yeah, exactly.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Kabhi Jersey ki street par, kabhi choti choti parties ke beech.
5: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
4: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
6: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
7: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज व्हाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफ कोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी। एज ऑलवेज उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virba, la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yeah, Jadeep.
1: हाँ जी
2: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे.
2: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए. बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए. 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: काम तो हो नहीं रहा ना. काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना. काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ. कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ. ये टॉर्च चला ली ठीक है. ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा. पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने. पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम. कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू.
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या. बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे.
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार. ये
2: खोलूंगा ना. खुल ही नहीं रहा. क्या करूँगा अब.
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर. तू फोन रख भाई. मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
4: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर. लेट्स फाइंड आउट. हेलो.
5: हाय माय नेम इज संध्या. हाउ आर यू प्रिसिला.
4: हाय संध्या. आई एम गुड. हैप्पी राखी टू यू संध्या.
5: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम. दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम. माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर लाइक You know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare note. Oh. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
4: So, aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
5: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So, yeah, we miss those days. Yeah.
4: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
5: एग्जैक्टली या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशन सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viraniejewelers.com.
6: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा. तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes. Come soon. Hi. Rani.
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: तुम्हें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में के से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपर हिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाए, क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण ने कई। पुरानी जीन्स में आपको श्रेया के साथ, जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
2: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
3: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
1: अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आपके बिजनेस के लिए जोहो वन सही है। जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस। जोहो वन इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
8: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
9: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
13: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
14: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
15: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
19: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
7: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
8: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो।
9: हाय,
8: व्हाट्स योर नेम?
9: शीतल।
8: हाय शीतल, हाउ आर यू?
9: गुड
8: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
9: सेम टू यू।
8: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
9: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले हैं मेरे भैया के घर। फ्राइडे को ही, इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
8: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
9: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं, वो भी आने वाले हैं। दूसरी सिस्टर है, उसके भी तीन बच्चे हैं, तो दो ब्रदर है, बेटे हैं और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है, वो तो बहुत नटखट है।
7: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका शुक्रवार की शाम में। और ये शाम और भी खास है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। सो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं आज का दिन आपके घर में हंसी मिठास और बहुत सारी प्यारी मेमोरीज लेकर आए। फिर चाहे आप अपने भाई बहन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, वीडियो कॉल पर राखी बांध रहे हो, या फिर हजारों माइल दूर होके भी दिल से कनेक्टेड हो। यार फेस्टिवल्स की ना खूबसूरती ही यही होती है कि वो डिस्टेंसेस को ना और भी छोटा कर देते हैं। और आज का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू हर उस लिसनर का जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। आप सबका प्यार और रिस्पॉन्स देखकर ना दिल बहुत ही खुश हो गया। और जो लकी पार्टिसिपेंट्स के नाम सिलेक्ट हुए जिन्होंने अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की है, आज उनसे मिलेंगे विरानी ज्वेलर्स पर ओक ट्री रोड इजलैंड पर। और वही होगा हमारा विनर मीटअप एंड प्राइज कलेक्शन। वैसे मैं भी आपसे वहां पे मिलने आने वाली हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं। तो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ एंड विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलैंड, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो अपनी रक्षाबंधन की शॉपिंग जरूर कीजिए फ्रॉम विरानी ज्वेलर्स, एंड फॉर मोर डिटेल्स विजिट viranijewelers.com। एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी मिर्ची की फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन न्यू जर्सी। अपनों के साथ वक्त बिताइए, मिठाइयां खाइए और इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट कीजिए। और चलिए अब इस फेस्टिव मूड को म्यूजिक के साथ और भी स्पेशल बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज फोरम।
1: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
2: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज़ वेल।
1: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
2: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
1: व्हाट्स हर नेम?
2: हर नेम इज महक।
1: महक, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। टेल मी, आप कैसे मनाते हो राखी?
2: मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ मनाती हूँ विद महक। हम लोग उसका फेवरेट खाना स्वीट्स खाएंगे एंड यू नो बाहर जाएंगे।
1: क्या है महक का फेवरेट मिठाई?
2: ओ, महक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है।
1: सो महक आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो, एंड हैव यू टोल्ड हर व्हाट राखी मींस, लाइक राखी का क्या महत्व है?
2: शी इज ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज्ड, सो उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है। तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार। उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
3: हेलो, ये कमलेश जी?
4: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी, आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
4: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
3: नहीं नहीं, देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
4: देखिए
3: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
4: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
4: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर किसी पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
4: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
4: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
4: No, not an issue.
5: 750 only? Yes, sir, absolutely.
3: Na, 750 na, bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Yep, This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions? SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
15: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो.
16: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है.
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: की टाइम।
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: तो चलिए आज ही ऐसे ही एक पार्टिसिपेंट से हमारी बात होने वाली है जिनका नाम है प्रतिभा जी। नमस्ते प्रतिभा जी।
3: नमस्ते,
2: कैसे हो आप?
3: मस्त हूँ।
2: तो प्रतिभा जी, आपकी रक्षाबंधन की तैयारी हो गई?
3: हाँ, हो गई है।
2: आप अपनी रक्षाबंधन की कोई भी एक प्यारी मेमोरी हमें बताइए।
3: मैं मेरे घर में बड़ी हूँ और मेरे दो छोटे भाई है, तो उनको मुझसे राखी बंधने का आनंद कुछ अलग ही था। मेरी शादी जरा जल्दी हो गई, फिर भी मैं हर साल उनको राखी बंधने के लिए भी जाती हूँ। और वो जब छोटे थे तब उनको जो मैं गिफ्ट लेके जाती थी वो देख कर तो वो बहुत ही खुश होते थे। अब बड़े हो गए हैं, अभी वो मुझे बोलते हैं, बचपन से आपने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, अब हमारा है, हम उसके डबल गिफ्ट आपको देने वाले हैं। ऐसे बचपन की वो उनकी वो अनोखी खुशी मुझे आज भी याद आती है।
2: ओहो, क्या बात है प्रतिभा जी। वो कहते हैं ना, बचपन में आप उनको राखी भी देते थे और गिफ्ट भी देते थे, यानी डबल इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अभी उसके रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, डबल डबल गिफ्ट मिल रहा है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत ही खूब बात, और थैंक यू सो मच हमारे साथ आपकी इतनी खूबसूरत कहानी शेयर करने के लिए।
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Desi khana,
9: desi shopping,
8: desi culture
9: aur desi entertainment.
8: Bas ek hi destination.
9: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
10: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
11: Tera kya hoga Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi. It's hot.

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
1: तो चलिए बात करते हैं स्नेहा जी के साथ. नमस्ते स्नेहा जी.
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते सिद्धि जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी बहुत अच्छी हूँ.
1: आपकी रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है?
2: अच्छी चल रही है. मैं तो उस दिन का हमेशा इंतजार करती हूँ, गिफ्ट मिले, कुछ उपहार मिले भाई से, यही तो बहुत बड़ी बात होती है.
1: क्या बात है. तो स्नेहा जी, आपकी रक्षाबंधन की कोई खास मेमोरी आपके भाई के साथ?
2: हम लोग एक दिन शाम को घर से निकले, राखी का ही दिन था, तो भैया बोले कि चलो कुछ गिफ्ट लेके आते हैं तुम्हारे लिए, तो चलो. तो बस मैं नीचे आई और भैया ने स्कूटर स्टार्ट की, मैं बैठने ही वाली थी, तुरंत स्टार्ट करके आगे निकल गया. आधा घंटा हो गया, थोड़ी देर बाद मुझे सामने से आता दिखा, अरे तुम बैठी नहीं. उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे पीछे बैठी नहीं हूँ. बड़े मैं सोच रहा था कि तुम बैठी हो, मुझे तो ये लगा कि आज मुझे मेरा गिफ्ट मिलता है कि नहीं. तब तो मैं भैया से बड़ी नाराज हो गई, पर मैंने कहा अभी इस भूल के लिए कोई माफी नहीं है, अब मुझे तुम्हें डबल गिफ्ट देना ही पड़ेगा.
1: क्या बात है. देखो इसे कहते हैं वसूल करना.
2: बैठो और चलते हो. Yes.
1: क्या बात है.
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
4: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय।
2: हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज नैशो।
1: हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
2: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
1: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
2: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
1: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
2: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
1: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
2: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। तो हम लंच का डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
2: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: অচানতি করি অচানতি করি
1: শ্যাম সর্দার লেটস গো নট ডঙ্কি হ্যাভ আ ফাঙ্কি টাইম.
2: बस इंतजार हुआ खत्म दोस्तों, प्लेलिस्ट वाले एमी विर्क नहीं, आज लाइव वाले एमी विर्क होंगे. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और पिछले कुछ दिनों से हम किस्मत की बातें कर रहे थे, फेवरेट एमी विर्क सॉन्ग्स पूछ रहे थे, और टिकट्स जीतने के लिए आपके इतने सारे मैसेजेस भी आ रहे थे. और फाइनली एमी विर्क मैजिक इज हियर इन न्यू जर्सी टुनाइट. जी हाँ दोस्तों, एमी विर्क यूनिटी टूर आज रात 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर कार्टरेट में होने वाला है. एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन. मतलब आपको तो पता ही है कि यार कॉन्सर्ट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है. और मिर्ची कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां. आज जब एमी विर्क आपका फेवरेट गाना लाइव गाएंगे ना, तो मिर्ची को जरूर याद करना. और जिनकी किस्मत इस बार कॉन्टेस्ट में नहीं खुली, यार पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट मिनट टिकट्स अभी जाके बुक कर लीजिए सुलेखा.com पर. और हो सकता है आज रात आप भी क्राउड में एमी विर्क के साथ गा रहे हो. तो न्यू जर्सी एमी विर्क आ चुके हैं, अब बस आवाज आपकी आनी चाहिए. तो चलिए कॉन्सर्ट से पहले स्पीकर्स पर एमी विर्क का ये मैजिक सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची. एंड आई विल सी यू टुनाइट एट कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर फॉर एमी विर्क यूनिटी टूर. तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: Hello, Anshika? Yeah, Anshika, aapka... Yeah... प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
1: जी बताइए, नाम क्या है?
2: संतोष. संतोष.
1: संतोष.
2: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं नहीं कोई बात. तो
2: अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए. मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
2: डू? आई एम एंट्रप्रेन्योर. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: भैया मेरे
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
14: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
15: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit AIMS. education.edu.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब मिर्ची खा.
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
19: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
20: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से. हेलो,
4: Hello.
20: Hi, what's your name?
4: Purnima.
20: Hi Purnima, how are you?
4: Good.
20: Great. क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
4: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ. पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ. और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको.
20: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
4: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ.
20: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
4: बड़े हैं.
20: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
4: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं.
20: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
4: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में.
19: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
21: This hour is brought to you by Raj Jewels.
22: Sham Shanda, let's do not donkey have a funky time.
23: Dal chawal ya aloo paratha? SUV, mid-size SUV या फिर सेडान, यार जितने ऑप्शंस होते हैं ना उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और अगर आप भी मेरे जैसे हो ना कि जितने ज्यादा ऑप्शंस दोगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है, तो ऐसे में ना मैं जो अपने डिसीजंस होते हैं वो आउटसोर्स कर देती हूँ. मतलब मैं खुद डिसाइड ही नहीं करती, किसी और को बोल देती भाई तू मेरे लिए डिसाइड कर ले. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है ना घर के मामले में बिल्कुल भी फेल होती है. अगर खुद का घर खरीदने का सपना है तो जितने ज्यादा ऑप्शंस हो उतना बेटर होता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है ना कि ये जो बैकयार्ड है जो हमें चाहिए वो सच्ची में चाहिए कि नहीं, बैकयार्ड के साथ फ्रंट यार्ड भी चाहिए कि नहीं या साइड यार्ड भी चाहिए कि नहीं, फ्लोरिंग किस टाइप की होनी चाहिए, घर का जो किचन है वो किस टाइप का होना चाहिए. जितने ज्यादा ऑप्शंस देखने मिलेंगे उतनी ही क्लैरिटी और भी ज्यादा आती है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा घर अवेलेबल हो फॉर सेलिंग. तो अगर आप भी फर्स्ट होम बायर हो तो चलिए मेरे दोस्त बीच से पूछते हैं फ्रॉम लाइन मॉर्गेज कि मार्केट में फिलहाल घर का कितने सारे ऑप्शंस है, क्योंकि यार एक ही तो जिंदगी है और इतने सारे ख्वाहिशें हैं, एक एक पूरी करना भी तो जरूरी है. तो चलिए पूछते हैं बीच से. ओवर टू यू बीच.

0: से है।
1: Happy Raksha Bandhan to all mutual listeners. Your friend Peesh from Lion Mortgage. They say the weather is going to be gorgeous, and today the US markets end the week on a negative note, and mortgage rates tickle up. Friends, what exactly does Lion Mortgage do? Lion Mortgage is basically a middle person between a home buyer and mortgage lenders. Instead of a buyer contacting different banks on their own, Lion Mortgage can help compare different loan options and find one that fit the buyer's financial situation. Lion Mortgage looks at things like a person's income, credit history, debts, down payment, and based on this information, they can help buyers understand what type of mortgages they can qualify for. So once again, friends, buying your dream home, call us today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Another important part of their job is helping with mortgage application process. We can collect documents, communicate with lenders, and help explain the terms and conditions of different loans. Overall, Lion Mortgage can make the home buying process easier by helping buyers understand their options and connecting them with potential lenders. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
4: जिसके शब्दों में आग है,
3: जिसकी आवाज में जादू है,
4: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: At
0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Sham Shanda, let's go not donkey, have a funky time.
13: कुछ फैमिलीज में टैलेंट सिर्फ चलता ही नहीं, विरासत बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और ये बात तो माननी पड़ेगी रोशन फैमिली के लिए, क्योंकि सबसे पहले द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को टाइमलेस क्लासिक्स दिए, फिर उनके बेटे राजेश रोशन, जिन्होंने अपनी मेलेडी से एक नए जनरेशन को कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, करण अर्जुन, जिसे इतने सारे यादगार गाने दिए, फिर हमारे राकेश रोशन, जो कि यार इतने सेलिब्रेटेड डायरेक्टर रह चुके हैं, और फिर उनके बाद आता है सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जिन्होंने एक्टिंग, डांसिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से यार अलग ही पहचान बना दी, और ऋतिक रोशन के अब बेटे रिहान रोशन, इन्होंने रोशन फैमिली का अगला चैप्टर शुरू कर दिया है, लेकिन एक्टिंग से नहीं, म्यूजिक से डेब्यू किया है। उनका पहला ओरिजिनल सिंगल दिस हेवनली प्लेस रिलीज हो चुका है, मतलब यार इस बार ना रोशन फैमिली का नया टैलेंट कैमरा के सामने नहीं, माइक्रोफोन के पीछे अपनी अलग पहचान बना रहा है। वैसे यार एक ही फैमिली, लेकिन हर जनरेशन ने ना अपनी अलग कहानी अलग तरीके से लिखी है, किसी ने कंपोजिशन से, किसी ने डायरेक्शन से, किसी ने परफॉर्मेंस से, और अब एक नई जनरेशन म्यूजिक के जरिए अपनी पहचान बना रही है। तो अब देखना तो यही होगा कि रिहान भी रोशन का नाम और रोशन कर पाते हैं कि नहीं, और इस म्यूजिकल लीगेसी को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। और जब बात म्यूजिक की हो रही है, तो चलिए सुनते हैं ऋतिक रोशन का ये एवरग्रीन गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Thank you.

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: ब्रॉट टू यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

की टाइम। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो.
1: Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
2: We have our next participant with us. Let's talk to him. Hello.
3: Hi, good morning, Pris.
2: Hi, good morning. Akash, is it?
3: Yes, this is me, Akash, here from New York. Every day I listen to your morning Mirchi, so it's been awesome.
2: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
3: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
2: Wow.
3: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. And wahan pe acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है तो इट विल बी ग्रेट यू नो
2: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
3: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो उनको मैं सारे यूनाइट करूंगी. तो 30-40 डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है एंड और उनका सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम.
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
4: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर. लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका. हेलो,
5: हाय, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, हाउ आर यू?
5: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल.
4: हाय आचल.
5: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड. ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा, दो तीन दिन.
4: सो आपके भाई का नाम क्या है?
5: मेरे भाई का नाम सुमीर है.
4: सुमीर, और के साथ में है या वो इंडिया में है?
5: वो यहीं पर है, लोकली है. सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर.
4: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
5: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं. तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है. तो ये वी जस्ट गो आउट, ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको.
4: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे, बहुत अमेजिंग.
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं.
4: Wow. That's amazing. And our contest
3: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go non-donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yeah, Jadeep.
1: हाँ जी.
2: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी.
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
2: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
2: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो कर रहा है कर. तू तू तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels. Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion.
3: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Kya banaye aaj? Shahi paneer banaye, kadai paneer banaye, matar paneer banaye ya fry paneer banaye? Agar aapke paas nanak paneer hai, to aap kuch bhi bana sakte hain. Aankhon mein chamak aur chehre pe noor, sirf beauty parlor jaane se nahi aata. उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर.
15: हाँ,
14: सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, एक ऐसा गाना एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
11: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मजे की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना व्हिच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: मेरे साथ में हमारे पहले पहले कंटेस्टेंट हैं, 14 ईयर ओल्ड। लेट्स टॉक टू हिम। हाय वत्स।
3: हाय।
2: सो टेल मी, व्हाट डू यू लव अबाउट राखी?
3: द वन थिंग आई लव अबाउट राखी इज दैट द होल डे आई गेट टू लाइक स्पेंड टाइम विद माय सिस्टर एंड लाइक एक्चुअली लाइक टॉक, cuz like she's on to like college, right? So she's always away. I have like fun time with her, and then the part where like gives me the laddu to eat and, like,
2: oh,
3: puts it into my mouth, the whole thing.
2: So what I understood is that you are in school and she's gone to college, she stays away.
3: Yeah.
2: Oh, so for Rakhi she comes back home.
3: Yeah.
2: Wow, so that actually is very special. Every Rakhi she comes back home. And what is your best Rakhi memory? Can you share it with us?
3: My best Rakhi memory would be probably when I was like 5, because like I used to watch this show Motu Patlu a lot. She got me this like Motu Patlu Rakhi theme, like this Rakhi theme, right? I was like so surprised because like I loved that show when I was like that age.
2: So do you and your sister relate to any of the characters, like you are the Motu or she is the Patlu, something like that?
3: Yeah, exactly.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in a association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Kabhi Jersey ki street par, kabhi choti choti parties ke beech.
5: Arz kiya hai, chandni raat thi, daud raha tha sone ka ghoda. Tabadak, tabadak.
4: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
6: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 903-3-मिर्ची।
7: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
4: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट. हेलो.
5: हाय, माय नेम इज संध्या. हाउ आर यू प्रिसिला?
4: हाय संध्या, आई एम गुड. हैप्पी राखी टू यू संध्या.
5: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम. दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर, ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर. लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare note. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
4: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
5: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
4: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
5: एग्जैक्टली. या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: बस इंतजार हुआ खत्म दोस्तों, प्लेलिस्ट वाले एमी विर्क नहीं, आज लाइव वाले एमी विर्क होंगे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिछले कुछ दिनों से हम किस्मत की बातें कर रहे थे, फेवरेट एमी विर्क सॉन्ग्स पूछ रहे थे, और टिकट्स जीतने के लिए आपके इतने सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। और फाइनली एमी विर्क मैजिक इज हियर इन न्यू जर्सी टुनाइट। जी हाँ दोस्तों, एमी विर्क यूनिटी टूर आज रात 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर कार्टरेट में होने वाला है। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। मतलब आपको तो पता ही है कि यार कॉन्सर्ट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। और मिर्ची कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। आज जब एमी विर्क आपका फेवरेट गाना लाइव गाएंगे ना, तो मिर्ची को जरूर याद करना। और जिनकी किस्मत इस बार कॉन्टेस्ट में नहीं खुली, यार पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट मिनट टिकट्स अभी जाके बुक कर लीजिए sulekha.com पर। और हो सकता है आज रात आप भी क्राउड में एमी विर्क के साथ गा रहे हो। तो न्यू जर्सी एमी विर्क आ चुके हैं, अब बस आवाज आपकी आनी चाहिए। तो चलिए कॉन्सर्ट से पहले स्पीकर्स पर एमी विर्क का ये मैजिक सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची। एंड आई विल सी यू टुनाइट एट कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर फॉर एमी विर्क यूनिटी टूर। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिए आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Yep, This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
0: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
4: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islin.
0: Apne sapno ki unchai ko chune ke liye AIIMS Education hamesha aapke saath hai.
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more. In demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: Simran, tu car chhad ke kitha ja sakdi hai? I know, Simran, meri galti hai, main tenu time nahi de sakya.
7: Nahi Raj, apne vich pehla warga hun kuch nahi reha. Sab kuch badal gaya. Tu badal gaya, tere dream badal gaye, tere preferences badal gaye. Kuch hai jo inne saalon vich nahi badlya? Hai kuch? Ki?
6: नानक रसमलाई? हाँ सिमरन, हाँ, नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
7: राज,
6: सिमरन,
8: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
0: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
11: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेनोरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेनोरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: Jai Gurudev, अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
3: 13 सितंबर रविवार
2: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही अलग चार्म है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे है वो भी आने वाले है। दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है और बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। दिस सितंबर 12th एंड 13th, जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
3: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, शॉपिंग, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अ हेल्थ फेयर, किड्स activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
5: For vendors and information visit www.krishnatemple.org.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.